गुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी गुरु रूप साध संत जीओ, संध्या का टाइम, हर साहब जी के पाठ प्रारंभ होने लगे हैं जी। आओ सारे रल के सतगुरु जी के पवित्र पावन हजूरी में हाजरी लाइए, हर साहब का पाठ श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, रहरास साहिब हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राम।

नहीं ठाक रहाइया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरी तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सुवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखने औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूख है खाई चली है दुख शोक विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाए रहाओ।

तुझी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भई जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता।

करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को पेव न पावत वेदा।

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई दिया है भयंकर गुरते अमरदास रामदास से वैसे आए अर्जुन हर गोबिंद सुमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कानून दयावैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह ने पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दर दते अंतर के गल से बोलो जी वाहेगुरु। आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली पुत्ते हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन छकया देख चलाई ते वाहे देख डिट किया तेना प्यार प्यार की कमाई दते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म है सी दिते बंद बंद कटवाए कूपरिया लगाईया चरखिया से चले आर नजर आए गए गुरु सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी तरीके सरसा सत्संग लगाया तिना की कमाई दते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। पंजा गुरुद्वारा दसा अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेताव है चित आमण का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब का चरियाए देखते की फतेह बृत की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बहले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीमा मत उची मत पत के रख के आप वाहेगुरु। गुरु की विवाज पंथ सदा शाहिदार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ भी छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन से आ रहे सेवा संभाल दिता अपने खालसा जी बख्शो ये नोटियां की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु तन तन गुरु दार जी दोहे कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आपके चरण कमला अरदास सिंह जी आपने बख्शिश की है अद चरण पुत्र गुरबाणी सुखमनी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता है इस वे संध्या समा जान के आदि चरना सोरदार लहरा साहब पाठ की कृपा करो हुईया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़वे बाणी स्रोत के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय की वार्ता करो जी अगो तो शोध से मित्र बाणी तैयारी बल बुद्धि बख्शिश करो धन्यवाद। इस खुशी में आप दखिया दातों विकराब साहब जगह त्याग हाजतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सत्संग रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। विवाह कृपा करो आप दख्शियां दातों जो लंगर चुट सेवारी प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैरिए चंगा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो शादी कला बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बखरी पालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वे तो लैके दाती आई हैं सब संगत जी हाजिर दर प्रवान करो कड़िया ने खिलाओ संगत दर दिते फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज कृपा करो सिख पंथ नूं खालसा कौम नूं एकता स्वागत पे आदि बख्शी करके सत गोरी दाल बख्शो चाना ना जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान गान फतेह बालता करो जी। गुरु जी महाराज सच पातशाह जी आप ये दर कर सेवादार बीबी सतविंदर कौर तांजू सुख शांति चाडी करा वास्ते बेनती करते हैं बेंत मारा के हरदार प्रवान करो बख्श कर रहे बीबी सतविंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो तुम कि नाम कृपालता करो जी। गुरु जी धनबाद सेवकों ने कमाइया सफल करो दर्शन की आपरात रख जी कृपा करो गुरु सच्चे पातशाह जी दूर दराजे कराने बैठिया लाइव करता कि शर्म कर रही हैं सारी संगत हाजिर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ तारा बख्शी की संगत बख्शे संगत आदि चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दर संगत माया भेटा खरी चरण प्रवान करो बच्चा अपनी कमाइया सफल करो कार्य वाद मददार सब संगत शुभकामना सरबंध पूरिया करो जी पर मेरा कराओ सेवा प्रवान करो पूरा चुका माफी बख्शो पवित्र गुना बख्शो प्रण अज के शाम के कथा की दबाई हमता वास्ते आगा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण सुनाती बनाओ से ही प्यारे मेरे जिन्हें भी आपका नाम जता हुआ नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा।

दया सिंध कृपा निध रूहानियत भंडार गुरु गरीब निवाज जुग हो जुग अटल दसा पातशाहियां दी जग दी जोत समर्थ गुरु आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र माई भाई गुरसिख बहुत वड्डियां भागां वाले ने गुरु दरबार विच हाजरी भर के सतगुरु जी दी अमृत बाणी सरवण करके जीवन दे लाहे प्राप्त करदे ने कुरबान जाई ओस वेला सुहावी जित तुमरै द्वारे आया धन सो वेला घड़ी धन धन मूरत पल सार धन सो दिन स संजोगड़ा जित डिठा गोर दरसार ओ दिहाड़े ओ घड़ियां सफल हो जांदियां ने जिन्ना घड़ियां द्वारे गुरु संगत विच बैठ के गुरु गुरु दे जाप नूं जपिया जावे तिस गुर कौ सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर की रीण नित मज्जन कराओ जन्म जन्म की होमै मल हरो तिस गुर कौ चोलावो पाखा महा अगण ते हाथ दे राखा तिस गुर कै गृह ढोवो पाणी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुर मौको दीना जियो अपना दासरा अपे मुल लियो अपे लायो वाहिगुरु जी अपना प्यार फिर अर्ज करा अपे लायो अपना प्यार फिर अर्ज करा अपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर कौ करी नमस्कार कल कलेश पै परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समरथ समरथ गुरु दी हजूरी अंदर सज बैठे हो मूलक स्वासा नु सफल करन वास्ते अमृत बाणी दी दात प्राप्त होई है गुरु के कीर्तनिया ने गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार विच अमृत बाणी दा कीर्तन आप जीआं नूं सरवण करवाया है आप जी ने कन्ना रूपी डोनिया नाल अमृत बाणी नूं छकणा कीता भाव के आनंद प्राप्त होया है गुरु कृपा है सारंग दी वार जड़ी ओ समाप्त हो चुकी सी परसों रोज जो बीत चुका है अज मलार राग दी वार जड़ी है परा आरंभ होण लगी है धन गुरु नानक देव महाराज जी अपार कृपा करदे ने आओ अज दे अमृत वचना नाल गुरु सवारी संगत जी सांझ करन

महाराज ने पुरब पैदा कर दते, तीर्थ रच दते, तीर्था ते जाना। महाराज ने जेवे जेवे तीर्थ रचे ने तेवे तेवे लोक तीर्था ते जाने आरंभ हो गए। पर महाराज ने सब तीर्था नू रच के ता फिर नाम दी महिमा कर दिती, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। रचे हुए परमात्मा दे ने कौन वड्डा मारे, कहिंदे नाम वड्डा, नाम करके तीर्थ

अंतर्जामी पुरख विधाते सरधा मन के पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन के तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरों जास विसंबर एकै, नाम जपत अगंत अनेकै, भेद प्राण सिमरत सुदाखिर, कीने राम नाम एक आखिर।

प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की

प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी

संदेह मैं चूर है। जे को जन्म मरण ते डर है साजना की सरनी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान शासन जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा। जाका मन हो सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप नहीं लेपा। निर धन को धन तेरो नाओ नितावे कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभु तेरो मान सगल कटा कौ दे बहुदान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रभराते। तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक कवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम। जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया। सासंग दुर्मत मल हिरया सगल उद्दम मैं उद्दम भला। हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार एयानिया सो प्रभ सदा संभाल। जिनकिया तिस चीत रख नानक निबही नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिंतु सासुआर सी गारिया गर्भगन में जिन्हें उभारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया उपर साख सहन मुख प्याव बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै।

पूरा। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाउस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाई सुआवे न चीत, जो बैराई ता सुप्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसे, अनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। याहु जुगत विहाने कई जन्म, नानक राख लियो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत। सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी, तुम ते होए सुआग्याकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। शलोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लग आन सुवाए। नानक न सी जई, बिना वै पत जाय अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विकोट गवावे। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत साव अपनी दे रास, खात पीत वरतै अनद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रति ताप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्ति से आज्ञा राखै, प्रभु की आज्ञा मन मत है। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत। बिर की छाया सो रंग लावै, ओ बिन सह मन पुछतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नान काप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटम सभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। स्थिर भगत साध की सर, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बात लेत विकारा। बिन भूजे मिथ्या सब पए, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथि साकत की यार जा, साच बिना कहूत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो, हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ। रह तवर कशवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जन नहार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीत तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नान कुंजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने। आप है आप, आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत। नेरा उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिसले लड़ लाए, तांत नंतर या सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह,
ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਹਸਤਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੌ ਰਖ ਮਨ ਵਾਹੇ

जय जे प्रसाद सब को मन मुक्ता को जस रसन बखान जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दरगह मान पावह नानक पतछेती कर जावह जे प्रसाद आरू कंचन देही लिब लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानकता की भगत करे हे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अशुभ हस्त सवारी मंत प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तनारा कुरु प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य सहते आई तिसहते आई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह करन नाद जे प्रसाद पिख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह सुमाव है सब प्रभु त्याग गुर कतला गो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप

राच जे प्रसा सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु नहाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा सुबदी साध के संग खूजल होत साध संग मिल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुग्यान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस कुंचा साध संगो सब की रेन साध के संग मनोहर बैनु साध के संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्नु साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नि बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग न ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग न ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बुढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग सगोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग वसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै साध के संग दिड़ै सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस

संति सब को वर्षावे शासन धर्म राय कर सीवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन साधक संग सब तान गम नान साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साधक संग कलुखत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग यहाँ वहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृद वसै नान कुदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै परमीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भया क्या कारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जिता सुने तिता बखियान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सुधा बेअंत साध की शोभा उचते उच्ची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कस बिन कोई नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा कु खोदै कु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी छीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार कहना ही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी करे प्रभया ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
और तारै जो अंतरनाम। सर्व मैं पेख भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानक अपर सगल निस्तार है, मिथ्या नाही रसना परसु। मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रै रूप न पेख नेत्र। साध की टहल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे। मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत। नान कोट मध्य को ऐसा परसो, वैसनो सोजी सुपर सुपर सन। विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै निह कर्म। तिस वैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे। केवल भगत कीर्तन सगराचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल। सब उपर होवत कृपाल, आप जड़ै अवरह नाम जपावै। नानको वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग। सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम। कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मलक होवै। तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत। मन तन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै। नान कैसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम मैं शोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का बुद्धि जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै। वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जिन कोय। कर कृपांतर उर तारै, पश प्रेत मुक्त पात्र को तारै। सर्व लोक काउ खुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काउ जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे। सगल संगातम दास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै। तैसा हर्क तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरता ईसाई जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगल ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभाव है सोई फुन होग। पस्तुर व्याप अंतरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विना। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक उस्त कर अनेक जनंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची बहुविधनक प्रकार। सुलो अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी। कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी। कई कोट बन भ्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते। कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है। कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है। नानक करते कंत न पावै, कई कोट पय अभिमानी। कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर। कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है। कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे। कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना। नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट सस्यर सूर्य निकेतर, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जग की नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा। सब ते नीरे सबू ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवे मरह, कई कोट भोजन नी फिर है। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत।
जय जय भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजन्ते आत्म में पार ब्रह्म लहन्ते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट काणी अर कांड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नु विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदय के कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा इस माता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पी वैमर पै सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को सास सास सुमारे नानक वे परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अल सो इष्ट पदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग किन में थापो थापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै तां पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पुत तू धारै आप करै अपन विचारै दुहां सिरिआं का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होई ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमक माए चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले किन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवास जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीश ताका लिखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बरना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई पुन थियो कब हूँ ऊंच नीच में बसै कब हूँ सोग हरक रंग हसै कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ बकास पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कब हूँ नृत्य करै बपात कब हूँ सोए रहे दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो तरवाल कब हूँ वे बह बड़ राजा कब हूँ पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त मह आवै कबू भला भला कहावै ज्यों प्रभु राखै तिव ही रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जोन परमै परमिया नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै ज्यों प्रभु भावै तिवै निचावै ज्यों तिस भावै सोई हुए नानक दूजा अवर न कोए कब हूँ सा संगत त्यो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकै अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वै जिन मरै बोजोन परमावै धन भूमका जो करै गुमान सुमूर कंधा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तृण समान का संग न जावै बोल कर मानु कूपर कर आस पल पीतर ताका हुए विनाश
सब ते आप जाने बलवंत, किन मैं हुए जाय पसमंत, किसे न बजाया अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सूजन नानक दर गै परवान, कूट कर्म करै अवतारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनिक तपस्या करे अहंकार, नव सुर फिर अवतार, अनिक जतन कर आत्म निद्रवै, हर दर गै कहो कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व किरण जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ हुए, तब इसको सुख ना ही कोई, जब ए जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मुँह मगन संगवाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लग कूट तावै, तृप्त नयावै माया पाछ पावै, अनिक भोग विख्या के करे, नै तृप्तावै खप खमरे, बिना संतोख नहीं कोरा, जय सुपन मनोरथ वृथे सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बडभागी किसे प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, हिसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आपा प्रभ सोए, जो किछ कीन्हु सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग, बूझै देखै करै भवेका, पहे का पहे अनेक, मरै न बिन सह आवै न जाय, नानक सद ही रहा सुमाय, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनु अपन विस्तार, सब कछु सुखाव करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, तांत नंतर कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौत कर रंग आपार, मन मया मन अपने माही, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले जीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सोचन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बौर बौर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जोन लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णामै जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहि, नान संत पावै तां पीगत पाहि, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक टिकन न पाई, संत का निंदक माह तियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दोग, नानक संत भाव है तो उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित्र, संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत भावै तां लय मिलाए, संत का दुखी अत विष ते टूटै, संत का दुखी किचै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत पावे तां ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यो बवाड तिलखित माहि दोहिला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया,
संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को उतर गए मिले से जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्टे कोई, जैसा पावे तैसा कोई, हुए पया कृत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुत करो दिन रात, तिसे त्याग हो सास विरा, सब कछ वरते तिसका की है, जैसा करे तैसा कोठी, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, विष्णु कृपा करे तिसा पु नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक तज हो से आनप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाय, अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसका दिया रहे अघाय, बहुत न तृष्णा लागे आय, मारे राखे कुआ, मानुक है किछ नाही हाथ, तिसका हुकुम भू सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो फेकठा गुरु का रंग, सात संग बन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गै नान कूजल मत्था, बटभागी तेजन जगमाही, सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एकु एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बख्यान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिजन की आसा, तिसकी कटी अजम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक दिसै न लागे दुख, जिसको हर प्रमंचित आवे, सो संत सोहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच ताप थाप, विनाशी नाही किछ खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करह बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरखो उत्तम कर्मा, जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए हुए सु हुए, करने हार पछाने सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस त्यो बुझे दिसमाय समाए, वे सुख निदान मुँह बने आए, आपसको आप तीनो मां, नानक प्रभ जनिको जान श्लोक, सर्व कला भरपूर प्रभ विरता जानन हार, जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार, अष्टपति टूटी काटन हार, गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन वाहे, तिस्ते विरता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिस सो प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल कट सो है, तनवंता हुए क्या को गर्व है, जा सब किस का दिया दर वै, सूरा जे को कहा वह, प्रभु की कला बिना कहता वह, जे को हुए वह दाता, और किस दिन हार जाने गावा, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा अरोग, क्यों मंदिर को था मैं थम्भन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्तम्भन, ज्यों पाखा नाव चढ़ करे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है,
जो अंध कर दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद चेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब माले हो मन भूल राम नाम हृदय में तो लाद के संत है संचाल अवर त्याग किया जंजाल तन तन कै सब कोय वकुजल हर दर गै सोए हो अपार बिरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तो पी वर प्रसाद को अपना जीव साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये निर्विघ्न ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचा के उठ गई संत दरे आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे को देवता धार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब की तिस्का करने जोग जिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थी आजा कह मन गुर की परती तिस जने आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया त्यो लो जा कह हृदय को सच करनी सचता की रह सच हृदय सत मुख है सच सचा या कार सच वरतै सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच सुमाता सलोक रूप नरेक नरंग किच त्रै गुण ते प्रभिन्न तिसै बुझाए नानका जिस हुवै सो प्रसन्नस्पदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख मानु की तु प्री त्याग जिसके प्रणाय किच कोई सर्व निरंतर एको सो आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो न राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो हरण भरण जाका नित्र फोर तिसका मंत्र न जाने हो रण ध्रु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज युग में जोगी तप में तपिस्त्र ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक पुरख का गिन अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाही सगल देव हारे वगाही पिता का जन्म की जाने पूत सगल पुरोई अपना सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावै से त्यो गुण में जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना विद किनो विस्तार प्रभ विनाशी अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर जिसके सब जिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुष महे समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत हुए आप सत की असुभ सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार हवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने की या नान ज्योतिष भाव है सो वृतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कह रंग राजन रहे गुर कह वचन पदार्थ लहे हो जाते दुकट नार जा कह संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कह संग एक लिविलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत बरसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत या सुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए
ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਏ ਲਈ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਪੂਜੈ ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ संभारे अपने जन का परदा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत में तो कोई न लखे प्रभु के सेवकों को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैस जो प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे पसम कर लश्कर कोट राखे जिसका सासन काट ताप ताको राख देख कर हाथ मानस जतन करत बपात तिसके करत बिरते जात मारण राखे वरण कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नान प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम राजो जन तृप्तानी मंत्र नाम मैं नाम समानी उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम बोलो जह जे बा दिन रात प्रभ अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह न जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु बचाता सो जन सर्व सुख का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर स्व पाप मिटावे वर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाव गावस्पदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचने हर नाम उछरै सतगुर सिखे बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बड़भागी हे सतगुर सिखा हलत बल सवारै नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारै गुर कै गृह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कच न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बिच सतगुर कै पात इस सेवक के कार्य राज सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जी साहब करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव अनिक पार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक कै अपने कच परम सह सियान लया न जाइये नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई है सफल दर्शन देखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दर गय गवि सुनकर वचन करन आघानी मन संतो गातम पतियाने पूरा गुरु रख्यो जा का मंत्र अमर दृष्ट पिख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव तिसलय मिलाए जे बाय कुछ तनेक सतपुरख पूर्ण बबे काहु पोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाए अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हर रस पावै जन कोय अमृत पीवे अमर सो हुए उस पुर का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे मोह माया के संग न ले मन मैरा कै हर हरे अंधकार दीपक प्रगासे नानक पर मुह दुख तै तेनासे तप्त माय टाड वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपौ हुए बसे सगल व्याधमन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा तारी सासु जपना मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण अवसर गुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चत प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए
हर बिंदु जाना ही कोई सर्व अंतरिक सोय उत्पुत्र व्या रूप रंग भय प्रकाश सत के संग रच रचना।

जिस तन कौ चार कुंट उठता वह सो तनु हर सेवा ते पाव है। ये सुख कौ नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी। अनिक उपावी रोग न जाय रोग मिटे हरब खदलाय। शर्म निदान वह हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान। मन प्रभु दोहु हर कह नाई दा दिस्ताव ता बैठाई। ताको बिघन न लागे कोई जा कर हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ। पाओ विनसै पूर्ण हुए आसु भगत पाया तुम प्रगास। तित कर जाय बसै बिनासी कहो नानक काटी जम पासी। तत विचार कह जन साचा जन मरे सो काचू काचा। आवा गवन मिटै प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव। यों रतन जन्म का हुए आधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक पाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करू मन लाए मन वंचित नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिंदी तिस बुझे न बेगाना नाम विसारू नानक पछताना। गुर की मतू ले याने भगत बिना बोडू बेस्याने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारू चीत। चरण कमल राखो मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जप हो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूछत हर को नाव सह सुभाय नानो गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर सुमैल बिन सुजाए होमै बिख फैल। ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास नाम संभाल। चाड़ सियानप सगली मना सास संग पावै सच तना। हर पूंजी सच करो बिहार यहाँ सुख दर गय जयकार। सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको साला एक सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप। अनिक विस्तार एक ते भय एक रात प्राचित गए। मंथन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाय अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल से लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नितनीत। हे कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्टि महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्तानी पूर्ण पुरख नहीं डोलानी। सुपार परे प्रेम रस रंग उपचे चाओ साध के संग। परे सरनान सब त्याग अंतर प्रकाशन दिन विलाग। बड़भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक की नु सुदा निहाल। बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया। इचपुनी श्रद्धा स पूरी रव रया सत्संग रजूरी। जिसका सत्य लिया मिलाए नानक भक्ति नम समाये। सुख बिसरै जे का न पाने सुख बिसरै जे किया जाने। सुख बिसरै जिन सब किस दिया सुख बिसरै जे जीवन जिया। सुख बिसरै जे अगन में रखे गुर प्रसाद को बिरला लख है। सुख बिसरै जे बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा घट है। गुरपुरत तेह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो वर नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन होसी चारू।
सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतासु उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर ही सुआउ नेत्रोपेक दर सुख हुए मन विकसै साध चरण तो हुए भक्त जना कै मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बर दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रया सर्व समाए प्रभु संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल आद पुर कारण करतारु भगत जना की प्राण धारु जो जो जपै सो हुए पनीत भगत पाय लावे मन हित हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम कर के गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारे अपन जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्क शोक किसे व्यापत जब अपना पापार ब्रह्म तमो का किसोपत परमो अपन खेला व्रती जा नान करने हार न दूजा जब हो प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक हरगम पारा तब नरक सुर को कौन उतारा जब निर्गुण प्रभ सहब सुबाई तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन निडार कवन कत डर है अपन चलता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछ तलेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर जा नानक अपन रूप पापी उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह चल छिदर लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संसुमावै तह किसे भूकवन तृप्तावै करन करावन करन है हार नान करते का नाहि संवार जब अपनी सुबापन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै प्रवीन तै बेस कतेब का कुचीन जब अपना पापुर तार है तो सगन अपसगन का विचार है जय अपन ऊच अपन अपनीरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चीरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जानो आप जया छल छेद भेद समाया उहां किसे व्यापत माया पुस्कुआ पया देश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक पुस्कुआ पै पहुंचा जया प्रचु प्रपंच कारु त्यो गुण मैं किन्नु विस्तारु पापुन ते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होम है मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचै तो नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हु बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग जिस पावे तिस अपना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे

किसकी आस न बिरती जाए। सेवकौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर। यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रव्या पह मेले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावो प्र परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुवाओ। आठ पहर प्रपिख हो नेरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुनु उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पलत दोएले हो सुवार, राम नामन तरुर तार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिसाच परिखिया। मंतन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निबह केप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नाया वह जाहे। किस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रख नहार ते आए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, किस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट नयावत काल।

नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ नित अमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन्न समाधन हत्य नाग कह न जाई चर्च विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंड दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हुंडोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुना अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारिहु स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहु विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मान है करन करावन हार प्रभु जान है अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगल युत पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आवर तारा सर्व नैन आपे खनहारा सकल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना आवन जानी खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मद अलिप्त रह जो किच कहना सुआपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते हुए सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा आप ला कर तू तत निकी आपे जाने अपने जी की आप साजधारी सब साचोत पोत अपन संग्राचता की गत मित कही न जाए दूसर हुए ता सो

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा है सोच ना हो गई जे सोची लखवार चुपाए चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपां लख होहे तां इक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहौ नानक विगसै वे परवाहौ साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै मंगै देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुक चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कह जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीपलो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जोग जुगत तन भेद सुनाए सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश सुनाए सत संतोख ज्ञान सुनाए अठ सठ का इसनान सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान सुनाए लागै सहज त्यान नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश
सुना है सरा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे अशगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावह मोख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरह तारे गुर सिख, मन्ने नानक पावह ना पेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान। पंचै सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करण नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार। धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै पवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया गुड़ी कलाम। ए हो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहै पार। नानक नीच कहै विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख काहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तान देह, पाणी धोतै उतर सोखे। मूत पलिती कपड़ होए, दे साबुन लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुकमी आवहो जाहो।
तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन थेत कवन वार कवन से रुक्ति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वखत न पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आख एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने एक बात सहस अठारह है कहन कतिबा असलु एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखा होए विनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही साला है एती सूरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिया है समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जेत समन होना विसरा है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै परावार अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगा है जोद अपार केते गणत नहीं विचार केते खप तुट है वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केतिया दुख भूख साद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाण होए होर आख ना सकाए कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के जिसनु बख से सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख ना सकै केई के जे वड भावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो घर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावै तुहनो पाउण पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे
ਗਾਵਹ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਾਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੁਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬੇਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ ਜਿਵ ਕਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰੋ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਸ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੂੜ ਆਨੰਦ
ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਹੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਛਪਾਇ ਛੰਦ, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਡਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ,
नमस्तस्तदेव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत अबंदे नमस्तं नरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगी नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शंत त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है तिरमान है निधान है तिरवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है आला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति बेभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपर्णी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरदकर्ता अधो ऊर्धार्धं अगं ओघर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो स्वाज स्वाजे नमो स्वाह स्वाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं ख्यात सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद
आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेखो आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बिहीन पेकत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानै केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चतुर चक मानै पुर तीन लोक चौदह है के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थापेओ सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सुपरम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्राप्त पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नेत कूट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राज पहनान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियम करियम निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वारती चत्र चक्र पारती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाए न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशिज दिशह के अभिज पिशह के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के आदित सुक के आवतूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रिय है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपौ अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है
ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮ ਹੈ, ਗਨੀਮਲ ਸਿਕਸਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤਮੀਜੁ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਰਜ਼ੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਅਲ ਹਜੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬੇਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓ ਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਭਾਦੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ, ਸੁਭੰਗ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਬੇਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਬੇਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਆਨ ਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਕ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਤੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਬਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲਿਖ ਹੈ, ਅਦਿਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਕ ਹੈ, ਅਟਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰਗ ਹੰਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਗੰਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੰ, ਸਰਬੰਗ ਧਰਮੰ, ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ, ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਬੇਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ, ਨਾ ਸਤ੍ਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਤਾਤਾਏ ਨਾ ਮਾਤਾਏ, ਨਾ ਜਾਤਾਏ ਨਾ ਪਾਤਾਏ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਹੈਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲਮ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ, ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ, ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ, ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਆਨ ਸ਼ੇਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ,
आजान बाहो एक ऐसा दाहो ओंकार आद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरुपर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनचा जुगात अनरंज बात अनटट भंडार अनटट अपार अडीठ कर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बुन मना शांत तो अप्रसाद करुणालय है अरकाल्य है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्व पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणाकर है अजपा जप है अथपाथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजपाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भवभंजन है आर्यगंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ताहार है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसं तामसं सात रूपे नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्युत ज्युते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजय अलय अपय अभय अभू अजु अनाश आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटहा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं विभूते समस्तु स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरं प्रणासी त्रिमुलकनिंदा समस्तु निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रीमुलरहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिद्धान के देख फिर ओंकार जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तोरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बेदन्यावत शीस न जात बिचारे इते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे
तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार प्रदिख है श्री भगवान भजे बेन भूपत एक रति बेन एक ना लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सप्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादित दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पागो ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाक उसी सिनेवायो को बुतान को पूजत है पाश को मेरे तान को पूजन तायो कूर के रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो आप हाथ दे मुहे बचा वहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करियै सब बैरन को आज संग्रियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दाय मुझे उबरे है मरण काल का त्रास नेवरे है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो
ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਫੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭਵ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰ ਬਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਜ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਧੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹਵਾ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰੇ ਹੋ, ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵਾਇ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ, ਕਿਲੇ ਵੇਖੋ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਕੋ ਛਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤ ਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ, ਅੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੂੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ, ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਪਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੁਨ ਤੀਨ ਤਿਹਜੈ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸੁਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ, ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਟ ਕੈ, ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਟ ਕੈ, ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द उता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा।

0: सच ध्यान सच जो मर जमे
1: महिला पहला बड़ी बड़ी आई जा बड़ा नाम बड़ी बड़ी आई जा सच न्याओ बड़ी बड़ी आई जा ने चलताओ बड़ी बड़ी आई जाने लाओ वड्डी वड्याई बुझा सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाय कीता करना सब जाय महला दूजा एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म सुमाय लै एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाणे कड़ लै एक ना माया विच निवास

हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उत्तर है। तन करे अच्छा तो सचता पर जानी है। जा सच तरे प्यार नाव सुन रह सीधा पाए मोख द्वार।

सूतक मनिए सब तै सूतक होए। गोहया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों।

ला बुझे कोई रहाओ। हान हट कर आरजा सच नाम करवथ, सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख। वण जा रिया स्यों वणज कर लै लाहा मन हस, सुन सास्त सौदागरी सत घोड़े लै चल। खर्च बन चंगियाइया मत मन जाने कल, निरंकार कै देस जाहे ता सुख लहे महल। लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम, बन बदिया कर तावणी ताको आखे तन। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण मन, बन बदिया कर तावणी ताको आखै तन। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चवर तखत दे मालक।

मिल शब्द गुरु प्रब नाहा, हौ तुझ बाचो करी उड़ीनिया, ज्यो जल बिन मीन मराहा। वडभागी हर त्याया, जन नानक नाम सुमाहा, मन दह दिस चल चल भरमिया, मन मुख भरम भुलाया। नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भुख लगाया, अन्नता धन धर दबिया, फिर

गुरमुखे सच करनी सारी, बिन से भ्रम भय झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करिया। घर मह नवनिध भरे भंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरै, पूरन जाके भागा। छाया प्रभ

भ्रती अरसो भ्रती जल जोगंती बहुपात बचा सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ऐसा जिने शरण की तिहन जिना दी विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रोह दे नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रोह की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस माल उपरों के चरणा नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख दे नाल दित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करिए गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकदस तिनगी गोद आनंद मान है गुरु प्रसाद संगत जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इन विशेष गुरमत समागम आप जी की गुरबाणी कीर्तन रही सेवा करने का सुभाग आप जी के दर्शन करने का सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश किया है। बाणी का कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन की महानता, यह कीर्तन की वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन का आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसीं रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे सरवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावें गुरु रामदास जी नूं प्यार करने वाला, उस दर नूं प्यार करने वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, उस इं नहीं लगता कि असी दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हैं। उस इं लगता है कि धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर की, उस घर की। डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहा, बदो पुरख बदाते तातु सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हा नानक कस मल जाए नाय रामदास सर। तन तन रामदास गुर जिन सिर यात्री सवार। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उथे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आपकी सरवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। करो कृपा सारी।